0: Monsieur Desmond Doyle, pourriez-vous demander au Sherpa Chumbi de nous imiter le cri du Yeti?
1: साबले चाहिँ सो जो तिमी यतिको आवाजले अलि गर्न सक्छ कि सक्दैन
2: गर्न
1: सक्छ ल गर
3: क्वा क्वा क्वा क्वा क्वा